0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु चले, हजरत उस्मान के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, फअस्लमा उस्मान, हजरत उस्मान भी मुसलमान हो गए। फिर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, हजरत साद भी मुसलमान हो गए। अब्दुल रहमान इब्ने औफ के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। हजरत तलहा के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। और इसी तरीके से अब यानी जो इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो लोग सैयदना अबू बकर के हाथ पे इस्लाम ला रहे, और फिर फुकरा में से, ज़ोफा में से हजरत अम्मार, यासिर, समैया, सुहैब, खबाब, ये सब इस्लाम ले आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि अब तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया था ना कि अंजिर, अब तो लोगों को डराए, अब तो लोगों को दावत दें, अब तो आप लोगों को पैगाम इलाही पहुंचाएं और दावत तौहीद दें, और जो ना माने उनको अजाब जहन्नम से डराएं, क्योंकि नबी का तो वजीफा ही बशीर और नजीर होता है कि मानने वालों को बिशारत दे और इनकार करने वालों को डराए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने एक दिन यह किया कि सुबह सुबह जो था जबल अबी कुबैस पे चढ़ गए। आप तो जानते हैं ये मक्के का हजर असद के सामने जो पहाड़ है जिसपे अब मोहल्लात बने हैं, ये जबल अबी कुबैस, और इस पहाड़ की भी अपनी शान है कि हाजा अव्वल जबल वुज़िअ अल अर्ज़, ये दुनिया के पहाड़ों में सबसे पहला पहाड़ है जो जमीन में रखा गया, बाकी पहाड़ सब बाद में रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल अबी कुबैस पे चढ़े, और अरबी जबान में उस जमाने में रिवाज था कि अगर सुबह के वक्त में या कोई खतरनाक बात कहनी हो, लोगों तक पहुंचानी हो, तो स्पीकर या मुवासलात के जराए तो नहीं थे, लोग ऊंची जगह पे खड़े हो जाते और कहते वाह सबाहा। अब हजूर ने दो तीन दफा जब आवाज लगाई, सारे मक्के वाले भागे, क्योंकि वो तो जानते थे कि अल्लाह का नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी नहीं मानते थे कि सादिक अमीन तो मानते थे कि सच्चा है, अमानत वाला है, दयानत वाला है, और जिसने 40 साल में कभी अपनी जबान मुबारक से गलत बात नहीं की, और वो कभी पहाड़ पर नहीं चढ़े, उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया। सब के सब कुरैश दौड़े, बनू हाशिम दौड़े, बनू मखज़ूम दौड़े, सब दौड़े। आए तो क्या देखते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह पहाड़ पे खड़े हैं, और सारे करीब आ गए, और आपने फरमाया कि सरदारो, कुरैशियो, मक्के वालो, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे तुम्हारा दुश्मन जो है लश्कर लेके बैठा हुआ है और हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी खबर को मान लोगे? तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मान ले। यानी इतनी बड़ी अहम खबर कि अभी पहाड़ के पीछे दुश्मन फौजें लेके यहां तक पहुंच गया है, अभी बस चढ़ाई करेगा तुम पर, इतनी बड़ी खबर अगर मैं दूं तो मेरी खबर को मान लोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मान लेंगे, कैसे नहीं मानेंगे। मा जर्रबना का इल्ला सादिकन आदिला, हमने तो 40 साल में हजूर आपको सच्चा पाया, हमने तो आपको अदल वाला, इंसाफ वाला पाया है, कभी आपकी जबान मुबारक से हमने कोई झूठी बात सुनी नहीं, तो कैसे नहीं माने? तो हजूर ने फरमाया फिर सुनो, मैं तुम्हें एक कलमा सिखलाता हूं, अगर वो तुम मान लो ना, सिर्फ अरब तो अरब, अजम भी तुम्हारे गुलाम हो जाए। सिर्फ अरब नहीं, अरब तो मामूली सी बात, तद दान अदलकुमुल अजम, पूरा अजम तुम्हारे दरवाजों पे सरनगू हो जाएगा। निकालने बना या रसूल्ला, अल्ले बना या मोहम्मद, जल्दी करें बताएं, ऐसा कौन सी बात है? हम तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अरबों को सरदारी का तो बड़ा शौक था ना मक्के वालों को। उन्होंने कहा इतनी बड़ी सरदारी के पूरा अजम भी हमारी क़यादत मान ले? हजूर ने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा हजूर फिर देर किस बात की है, मेहरबानी करो हमें जल्दी बताओ। आपने फरमाया अकूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। मक्के वालों फिर ये सब गैर अल्लाह को छोड़, پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو. اب جب حضور نے دعوت توحید دی اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب جس کی کنیت تھی, نام اس کا ابی لہب نہیں تھا, ابی لہب کنیت تھی, نام اس کا عبدالعزیٰ تھا, کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب, تو اس کا نام تو عبدالعزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے, اتنا سرخ. تو اس نے بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی, کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا, کہنے لگا نعوذ باللہ ہلاکت ہو آپ کے لیے, آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایک محاورہ ہے عرب کا تبن, تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ, آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا, یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا, اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں نے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو, بس اس کی باتیں نہ سنو.

मान ले आया कि जी मैं तो मानता हूं, एक पानी का गोता लगा। लेकिन अबू जहल इतना इतना शदीद है, इतना जालिम है कि गर्दन कटी हुई है, आखिरी रगे हैं, फिर भी कुफर से बाज नहीं आया और इस्लाम की मुखालफत करने से बाज नहीं आया। अब देखें कि उसने जुल्म और सितम की जो तरीका ईजाद किया है, आज पूरी तारीख आप उठा के देख लें, आज की तारीख में आप समझ नहीं सकेंगे कि अबी जहल से पहले भी किसी जालिम ने ऐसे सोचा होगा। बाद में तो लोगों ने बहुत सोचा, क्या कुछ नहीं हुआ कश्मीर में, क्या कुछ नहीं हुआ कोसुफू में, क्या कुछ नहीं हुआ सर्बिया में, क्या कुछ नहीं हुआ शीशान में मुसलमान बेटियों के साथ, खवातीन के साथ। अबू जहल ने दो ऊंट मंगवाए और ऊंटों को रस्से बांधे गए और रस्से बीबी सुमैया के पांव में बांधे गए, एक इस पांव में रस्सा बांधा गया, एक इस पांव में रस्सा। ये कभी आपका अकल सोच सकता है तहजीब का ये तरीका? और मुखालिफ सिमत में ऊंटों को खड़ा किया गया और उस जालिम ने कहा कि जब मैं हुक्म दूं तो दोनों ऊंटों को भगा दिया जाए, तो एक ऊंट इधर दौड़ेगा एक ऊंट इधर दौड़ेगा। अबू जहल सामने खड़ा है, जब ऊंटों को दौड़ाया तो खुद नेजा मारा बीबी समैया की शर्मगाह में और बीबी साहबा दो हिस्सों में चीर दी गई। ऑपरेशन नहीं, छुरी से नहीं काटा गया, तलवार।

ऐसे गड़े पड़ चुके थे ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे जैसे गड़े होते हैं और पूरे अंदर तक गड़े पड़े हुए और सिया हो गए। हत्ता कि हजरत उमर जैसा आदमी, हजरत अमीर अल मोमिनीन उमर जैसे आदमी कहते हैं कि मुझसे सब्र न हो सका, मैं रो पड़ा और वल्लाहि मा रायतु, तो खुदा की कसम ऐसी पुष्ट किसी इंसान की मैंने नहीं देखी थी। मैंने कहा खबाब ये क्या है, उसने कहा इस्लाम के लिए जब हम अल्लाह का नाम लेते थे तो जालिम कुफार जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंगारे अंगारे बनाए, अंगारे बनाकर, और अंगारे पता है कैसे बनाए गए, ये लकड़ी के अंगारे नहीं, उन्होंने पत्थर लेके आग में रखे, पत्थरों को आग में रखा और पत्थर जब आग की शिद्दत से सुर्ख हो गए, अंगारा बन गए पत्थर, जब अंगारा बन गए तो मेरे कपड़े उतार के मेरी टांगों से पकड़कर मुझे उन पत्थरों पे खींचा, और जब मुझे खींचा जाता था तो जहां जहां पत्थर जलता था जला के अंदर गड़े पड़ जाते थे, और अंदर से जो मेरी पीप बहती थी उसी से वो अंगारे बुझते थे, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होता था। और एक दिन आबना के लाल सरकारे दो आलम रहमत दो जहां सैयद मोहम्मद अरबी पिदा हुआ अभी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काबा शरीफ के पास बैठे हैं, यही खब्बाब को मौका मिला हजूर के करीब, वरना तो काबे में कौन आ सकता। करीब आने के बाद कहने लगे अला तदउ लना या रसूल अल्लाह, अला तस्तंसिर लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप कुछ ना करें, अल्लाह से तो दुआ मांगे हमारे, अल्लाह से तो मदद मांगे कि अल्लाह पाक हमारी नुसरत फरमाए, हम कब तक ये अदाब तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हजूर ने फरमाया कि खब्बाब क्या कह रहे हो, हमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं कि अल्लाह के दीन के लिए जिनके सरों पे आरा रखा गया, आरा रख के चलाया गया, जैसे लकड़ी को दो हिस्से किया जाता है, वो दो टुकड़े हो गए लेकिन उन्होंने उफ नहीं की, तुम अभी से घबरा गए। आपने फरमाया खब्बाब क्या कह रहे हैं, एक एक दिन में सात सात अंबिया को कत्ल किया गया, एक एक दिन में अल्लाह के अल्लाह का नाम लेने वाले जो हैं उनके सरों पे आरे रख के चला दिए गए, एक एक दिन में अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम को फांसियों पे लटकाया गया, अल्लाह के नाम लेने वालों को नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला ऐसा होता था कि उनके चमड़े उतारे जाते थे। आप जरा अपने हिंद की तारीख उठा के पढ़ें कि जंगे आजादी से पहले जब अंग्रेजों ने जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म किया था तो एक एक दिन में 500-500 दीन वालों को फांसी दी गई, और उलमा आम मुसलमान भी नहीं, उलमा के ये चमड़ा जो है जैसे जानवर का चमड़ा उतारते हैं ना, यूं चमड़ा उतारा जाता था और फिर उन पर नमक छिड़का जाता। हजूर ने फरमाया खबाब सब्र करें, एक वक्त आए, एक वक्त आएगा जब मेरा दीन पूरी दुनिया पे गालिब, और फरमाया एक वक्त आएगा कि अगर एक औरत मक्के से लेकर सनआ तक यानी यमन के शहर सनआ तक सफर करेगी उसको किसी चीज का खौफ नहीं होगा मासिवा अल्लाह के। यानी आप अंदाजा करें सीरत पाक का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशीन गोई का कि उस आलम में ये तहजीब का ये आलम है, जब सारे सहाबा पर अजाब के जुल्म के तमाम हरबे आजमाए गए तो कुछ सहाबा ने आकर हजूर से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह हमारे पास इतनी कुव्वत भी नहीं, और अगर थोड़ी बहुत कोई इंसान के पास कुव्वत है तो आप कहते हैं सब्र करें तो इसका कोई हल बताएं। हजूर ने फरमाया मैं आपको इजाजत देता हूं कि हबशे की तरफ चले जाएं, मैंने सुना है हबशा में एक ऐसा बादशाह है कि जिसकी शहनशाही में जिसके मुल्क में किसी पर जुल्म नहीं होता, वो किसी को जुल्म नहीं करता, तो तुम लोग जो है हबशे की तरफ चले जाओ। तो सबसे पहले हबशे की तरफ हिजरत करने वालों में कौन थे, हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान, और उनकी बीवी उस वक्त कौन थी, बीबी रुकैया बिनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की बेटी हजरत उस्मान। तो हजूर ने फरमाया कि इस दुनिया में यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद, कि एक तो लूत अलैहिस्सलाम थे ना जिन्होंने हिजरत की, और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, जिन्होंने अपने वालिदैन का घर छोड़ा आदर का घर छोड़ा, और लूत अलैहिस्सलाम आपके साथ तशरीफ ले आए हिजरत में। उसके बाद फरमाया अल्लाह के रास्ते में अगर कोई हिजरत कर रहा है तो उस्मान है। अबू हुज़ैफा हजरत उस्मान तकरीबन 13

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: और सारी दुनिया सीधी बात है कि वो बुराई की तरफ जाएगी, तकरीर सुनने के लिए कौन आए। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने आपको तकलीफ भी दी और कुछ लोग भी नहीं आएंगे। बस यही है कि आप इशा की नमाज वहां मस्जिद में पढ़ा दें और उसके बाद दुआ फरमा दें, बस। आप तो तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जब आदमी ही कोई ना हो तो बंदा आखिर तकरीर किसको करे, और मस्जिद में वो दो चार आदमी जो होंगे वो तो पहले से आपके मुतकरीन में है, हमेशा दर्द सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं। बस हम कहा ठीक, मस्जिद में तशरीफ ले गए, इशा की नमाज पढ़ी, तो बाकी ठीक सी बात थी कि वहां यानी ज्यादा से ज्यादा 10 आदमियों के बजाय 20 आदमी हो गए। जब सलाम फेर के सुन्नतें वगैरह पढ़नी और दुआ का वक्त आया तो वाले साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 10 हूं या 20 हूं, आप आए तो हैं, अल्लाह के नबी तो एक एक आदमी को जाके कुरान सुनाते थे, मेरे सामने तो कम से कम 20 आदमी बैठे हैं। तो अल्लाह ने वाले साहब को बड़ी आवाज दी थी माशाल्लाह। तो उन्होंने जब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो एक गाने वाली जो थी वो गा रही थी, तो उसके कान में आवाज पड़ी, तो उसने लोगों से पूछा कि ये क्या आवाज है। उन्होंने कहा एक आलिम है और वहां कोई तकरीर है, मौली शौली मुल्ला शुल्ला किस्म का आदमी है, कुरान पढ़ा है। उसने कहा कि मैं तो कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती, आप लोग जहन्नम जा सकते हैं, तो क्या है? मैं तो अल्लाह के कुरान का मुकाबला नहीं। और उसने कहा कि देखे नहीं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्ब

जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी मरियम गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये तो तेरे रब का फैसला है और तेरे अल्लाह को बगैर तेरी शादी के बगैर किसी चीज के बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। और अल्लाह तो चाहते हैं कि उसको एक निशानी बनाए अपनी कुदरत की कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह बना तो सकता है लेकिन जब तक मियां बीवी ना हो वो भी नहीं बना सकता। अल्लाह चाहते हैं कि मैं अपनी कुदरत के तमाम नमूने दिखा दूं, मैं चाहूं तो नूर से मलाइका पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो नार से जिन पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मिट्टी से आदम पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो आदम से हव्वा पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मरियम से ईसा पैदा कर दूं, यखलुक मा यशा, मेरी मर्जी में जो चाहूं जैसे चाहूं, यही तो उसकी शान। अच्छा जी, उन्होंने कहा कमाल है तो ठीक है। और उन्होंने कहा बीबी तुम बात कहो ना कहो, काना अमरम मकजिया, ये तो अल्लाह की तकदीर का फैसला हो चुका है, अब वो तब्दील थोड़ा होता है। अब जनाब यानी हमल भी हो गया, बदा अमल भी हो गई, अब बच्ची बिचारी बैठी रो, या लैतनी मित्तु कबल हाजा व कुंतु नसियम मनसिया, रो रही है फिर भी, हालांकि जिब्रील बातें करके गए, कहती हाय काश मैं तो पैदा ही ना हुई होती, कम से कम चलो ठीक है मैं बेगुनाह हूं, मेरा दामन साफ है, लेकिन कौम तो नहीं जानती ना, जिब्रील की बात हुई तो मेरे साथ हुई है, पूरी बिरादरी के साथ तो नहीं हुई ना, बिरादरी मुझे जब आएगी तो मैं कैसे मुकाबला करूंगी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मुकाबले की जरूरत नहीं है, जब कौम सामने आ जाए तुम चुप करके सिर्फ ईसा की तरफ इशारा कर दो, हम जाने हमारा ईसा अलैहिस्सलाम जाने, कौम आ गई गुस्से में भरी हुई है, कहती या उख्ता हारून मा कान अबूक इम्रा सौइन वमा कानत उम्मुक बगिया, के भाई हारून की बहन, बाद लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई थे हारून उनकी बहन, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि कान रजुल सालिहन, उस इलाके में एक बहुत बड़े आबिद गुजार थे, उनका नाम हारून था जिसकी तरफ निस्बत की गई। उनने कहा तेरा बाप अच्छा, तेरी माँ अच्छी, ये क्या है? फअशारत इलैही, अब बीबी ने इशारा किया, कालू कैफ नुकल्लिम,

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरानी इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत पाक के सिलसिले में कुछ अरसे से ये सिलसिला दुरूस जारी है और हमने सीरत मुबारका के कुछ हिस्से, कुछ अहवाल, कुछ हालात पढ़े, बयान किए और सुने। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का की सरजमीन तंग हो गई तो आप ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ वालों ने भी इस्तकबाल के बजाय बड़ा शदीद रद्द अमल जाहिर किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को जख्मी किया। सुफहाए ताइफ ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाजें कसे, आपके पांव मुबारक खून से भर गए। उसी आलम में फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस सरजमीन हरम मक्का मुकरमा को लौटे तो आपके लिए ये दिन जो थे बड़े शदीद हुमूम और गुमूम के दिन थे। एक तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह परेशानियों का और दुखों का आलम था, आमुल हुज़्न था। मुआविनीन वफात कर गए, मुसाइदीन के पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं कि वह दुश्मनों का मुकाबला कर सकें और अल्लाह के नबी अल्लाह की दावत के लिए हर वक्त बेचैन हैं। अल्लाह की कुदरत अपने फैसले फरमा रही थी कि अल्लाह ने एक फैसला फरमाया कि अपने नबी के लिए इसरा और मेराज, ताकि एक तो हुजूर की शान में और ज्यादा बुलंदी हो, दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्मीनान कल्ब हासिल हो और आपके गमों का बदावा हो और पूरे आलम पर ये चीजें जो हैं जब आश्कारा होंगी तो फिर उन्हें शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म होगा। और साथ एक गुना तसल्ली थी कि मेरा मदनी, सिर्फ मक्का और ताइफ से आप घबरा रहे हैं कि ये आपका साथ नहीं दे रहे, हम तो पूरी दुनिया को, आसमानों को भी आपके मुसख़र करने वाले हैं, ये तो छोटे से शहर है। तो अल्लाह की तकदीर ने आपके इसरा और मेराज का फैसला। अब ये बात याद रखें कि आमतौर पर हमारे यहाँ इंडो पाक में लफ्ज़ मेराज ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सफर मुबारक जो है इसके दो हिस्से, एक हिस्सा जो है वो इसरा है और एक हिस्सा मुबारक जो है वो मेराज। इसरा का माना होता है सैर, और खास तौर पर वो सैर जो रात के किसी हिस्से में की जाए उसको कहते हैं इसरा। क्योंकि अरब में मुहावरात, अरब में कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जो किसी खास वक्त के साथ ताल्लुक रखते हैं, वरना सैर का लफ्ज तो सैर है, लेकिन जब अरबी में इसरा का लफ्ज सैर के माने में, माना यह होता है कि रात की तारीकी में या रात के किसी हिस्से में जो सफर किया जाए उस पर सैर का इतलाक। इसी तरह पूरे कुरान मुकद्दस में आप नजर डालेंगे तो जहां जहां आपको लफ्ज इसरा मिलेगा, जैसे यहां पर मैं असरा

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तो उन्होंने एक बात का अफसाना कर, भाई अगर काबे के अंदर पैदा होना दलील खिलाफत है तो काबे के अंदर तो मोहम्मद मुस्तफा भी पैदा नहीं हुए, फिर वो नबी कैसे बन गए? ये क्या बात हुई? ये कोई दलील है कि जो काबे के अंदर पैदा हो जाए सिर्फ वही खलीफा बन सकता है? तो नबुव्वत तो खिलाफत से बदरजहा आला चीज है, तो फिर अल्लाह के नबी तो काबे के अंदर पैदा नहीं हुए, वो कैसे नबी बन गए? तो असल वजह क्या थी कि किताबों में तो इतनी लफ्ज था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत खाना काबा में हुई। अब उसका तर्जमा इन्होंने ये किया कि काबा शरीफ के अंदर हुई, हालांकि मुराद ये था कि हद्दे हरम में हुई। अब उसी को आप देखें कुरान में कि अगर हजूर बीबी उम्मे हानी के घर में थे तो वो भी हरम मस्जिद अल हराम, अगर हुजूर हतीम में थे वो भी मस्जिद अल हराम, अगर हुजूर जमजम के कुएं के पास थे वो भी मस्जिद अल हराम। कुरान ने तो एक लफ्ज बोल के सारे अकवाल को जमा कर दिया कि ज्यादा बहस की तुम्हें क्या जरूरत है, हजूर हरम में थे बस मस्जिद अल हराम में थे, बैत उम्मे हानी में हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, दार अरकम में हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, इंदा बेरे जमजम हूं तब भी मस्जिद अल हराम है, और दाखिल अल हतीम हूं तब भी मस्जिद अल हराम है। कुरान तो एक ऐसी जामे बात करता है कि जिसके अंदर फिर किसी सोच की, किसी बहस की, किसी अकली मुशगाफियों की बात की जरूरत ही नहीं रहती। पर मैं

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अजीज नौजवानों, हमने अपने इन दुरूस के सिलसिले में जो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक हैं बात पहुंची थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा और मेराज तक, और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली, समझ ली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज मुबारक जो है और इसरा जो है वो आपके रूह माल जसद के साथ और बहालत बेदारी, यानी ये ख्वाब का वाकया नहीं, ना ये कोई रूहानी मेराज है, बल्कि ये हकीकतन जिस्मानी मेराज है और आपका सफर मुबारक जो है वो रूह माल जसद है, मक्का से बैतुल मक़द्दस तक और बैतुल मक़द्दस से आसमानों तक। इसी पर जमहूर सहाबा हैं, इसी पर जमहूर ताबईन हैं, मुहद्दिसीन हैं, अइम्मा फुकहा हैं, उलमा हैं, औलिया अल्लाह हैं, जमहूर की राय जो है वो यही है। बाकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज मुतअद्दद मरतबा हुए हैं, कभी ख्वाब में, कभी रूहानी तौर पे, उससे किसी को इनकार। लेकिन ये वाकया है मेराज जिसका जिक्र इसरा और कुरान में है, ये वाकयतन मेराज जिस्मानी। और दूसरी बात यह है कि ये भी बहुत इख्तलाफात हैं, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में हुआ और बाज़ उलमा ने लिखा है कि रमजानुल मुबारक में हुआ और बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये रजब के महीने में हुआ, लेकिन राजे कौल मशहूर कौल यही है कि रजब का महीना था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हिजरत मुबारक से 1.5 साल कबल जो है ये वाक़ अजीम जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत शान, आपकी रफात, आपकी बुलंदी और आपकी कल्ब मुबारक के लिए तसल्ली के मेरे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फारो मुशरिकीन के मुआरजे से न घबराएं, न दिलगीर हूं, ये आसमान मेरे हैं, ये जमीनें मेरी हैं, ये कायनात मेरी है, मैंने जब आपके लिए आसमानों को मुसख़र कर दिया है तो इन लोगों का क्या है, हम जब चाहेंगे, ये तो हमारी हिकमत है कि जब कोई दाई दावत पे आता है तो उसकी मुआरजत भी होती है, मुआफ़कत भी होती है और मुखालफत भी होती है, क्योंकि ये नामुमकिन है दुनिया में कोई बात, कोई दावा और वो भी सच्चा पेश किया जाए और उसके मुखालफत ना हो। तो बहरहाल हजूर का सफर और हजूर का मेराज जिस्मानी, और राजे कौल मुबारक भी यही है कि ये रजब और हिजरत से कबल। अब हमने तकरीबन दर्स साबिक में इस बात तक पहुंचे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर बैतुल मक़द्दस में पहुंचे। रास्ते में हजूर ने बड़े अल्लाह की कुदरतों के मनाजर देखे जिसका जिक्र आप सुन चुके। मस्जिद अक्सा में पहुंचने के बाद सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुरबा, आपका जो बुराक थी, उसको मस्जिद के बाहर एक पत्थर के साथ बांध दिया और फिर हजूर को लेकर अंदर से। और ये बात भी किताबों में मौजूद है कि जितने अल्लाह के अंबिया हैं हकीकतन उसका अदद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आम मशहूर बात है कि 1,24,000 हैं, लेकिन अल्लाह आलम कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया जो हैं वो उस मस्जिद अक्सा में मौजूद। अब इसी पर उलमा किराम ने बड़े इख्तलाफ और बड़े दलाइल जमा किए हैं कि भाई सारे अंबिया, अब आदम अलैहिस्सलाम को तो फौत हुए, हजारों साल गुजर गए, نوح علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے، تو سارے پیغمبر جو تھے وہ کیسے وہاں تشریف لائے اور قبر کی زندگی کے بعد انہیں دوبارہ کیسے بھیجا گیا؟ اس پر علماء کی بڑی ابحاث ہیں، بڑے اقوال ہیں اور بڑی دقیق بحثیں ہیں، جن سے آپ تعرض نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ خالص علمی مباحث اور وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتے جب تک آدمی کا ان علوم پر دسترس نہ ہو. آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے یہ بات بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت میں سب کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں تو اس سے پہلے بھی قادر. ہارون علیہ السلام جب فوت ہو گئے اور بنو اسرائیل اس وقت وادی تیہ میں تھے، وادی تیہ جو ہے یہ مصر اور شام کے درمیان، بیت المقدس کے درمیان میں ایک بہت بڑا صحرا اور ایک بہت بڑا میدان ہے جس کا نام، اور یہ وادی تیہ جو ہے تقریباً 90 میل لمبی اور 27 میل چوڑی ہے. اسی میں اللہ نے بنو اسرائیل کو قید کر دیا تھا 600,000 آدمیوں کو، کہ 40 سال تک وہ اسی میں سرگردان پھرتے رہے اور باہر نہیں نکل سکے. تو اسی وادی تیہ میں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی. ہارون علیہ السلام کے وفات کے کچھ دنوں کے بعد بنو اسرائیل نے نعوذ باللہ آپس میں یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ ہارون علیہ السلام چونکہ ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے، ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو مار دیا. یعنی بنو اسرائیل ایک ایسی قوم، ایک عذاب میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانا تو اللہ

परेशान हुआ। उन्होंने कहा अजीब बात है, मेरा भाई है, अल्लाह का नबी है, मैं अल्लाह का कलीम हूं, अल्लाह का रसूल हूं, मैं अपने भाई को कत्ल क्यों करूंगा भाई। उन्होंने कहा नहीं बस वो हमारे साथ चूंकि बहुत मेहरबानी फरमाते थे ना, इस गुस्से में आपने कत्ल कर दिया है। हत्ता के अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी यह मौजज़ा अता फरमाया कि आप आए और हारून अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे खड़े हुए और हुक्म दिया कि अल्लाह के इज़्ज़त से आप जिंदा हो जाएंगे। हारून अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। उन्होंने कहा मुझे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मारा, मैं तो अपनी तभी मौत फौत हुआ। अब जनाब शर्मिंदा हुए, अब क्या जवाब दे। तो अल्लाह अगर हारून अलैहिस्सलाम को जिंदा कर सके, अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने सही मुस्लिम में हदीस है, आपने फरमाया कि उसी से इसरा वाली रात में मैं एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कायम युसल्ली फी कब्र ही, अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हज के मौके पर देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम एक ऊंटनी पे सवार हैं और कानों में उंगलियां दिए हुए हैं और बड़े जोर जोर से लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक पढ़े। तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम वहां हज के लिए आ सकते हैं और कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं तो उनका बैतुल मक़द्दस में आ जाना भी कोई बड़ी बात। वमा ज़ालिका अल्लाह बि अज़ीज़, अल्लाह के आगे क्या मुश्किल। और बाद उलमा ने फरमाया कि जैसे एक आलम अरवाह था जिसमें सिर्फ हमारी रूहें थी और एक आलम दुनिया है जिसमें हम बस रहे, इसके बाद एक आलम बरज़ख है और उसके बाद फिर एक आलम आखरत है। उन्होंने कहा इसी तरह एक आलम मिसाल है। आलम मिसाल का माना यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मिसाली वजूद अता फरमाए कि वो कब्र मुबारक से भी खुरूज लादिम ना आए और मिसाली वजूद के साथ मस्जिद अक्सा में भी हाजिर हो जाएं। बाद उलमाए किराम ने रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस बात को यूं बयान फरमाया, लेकिन असल बात आप इसी पर रखें कि एक बात तो यह है कि अल्लाह के अंबिया अपने कबूर में जिंदा है, दूसरी बात यह है कि सरी हदीस है कि अल्लाह ने जमीन पर यह बात हराम कर दी है कि वो किसी नबी के जिस्से को छेड़ सके। यानी हर बंदे की मरने के बाद हो सकता है कीड़े लग जाएं, हमें कीड़े खा जाएं, सब मुमकिन है, लेकिन अल्लाह हर्रम अजसाद अल-अंबिया अल-अर्ज़, अल्लाह ने जमीन पर अंबिया के जिस्से को हराम कर दिया है, उसकी ताकत ही नहीं कि अंबिया के जिस्से को छू सके। और अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे जिंदा कर, इसलिए कुरान एक जगह कहता है वलकद आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिरयतिम मिन लिकाई, कि मेरे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दिए और आप उनके मिलने में किसी शक में न पड़े, वो हकीकी मुलाकात होगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम से और तो मुलाकात है नहीं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ सिवाय मेराज की रात, इसका माना यह है कि वो मुलाकात भी हकीकी थी। और जैसे के बाद उलमा ने लिखा है कि भी रात के न गुजरने का माना यह था कि अल्लाह ने गर्दिश और लैल और नहार को रोक दिया, ब्रेक लग गए, बस ठहर जाओ कि अब मेरे मदनी मेराज पे चले हैं, आप जहां हैं वही रुकी रहे बस। तो जब सारा निजाम ही रुक गया, सारे निजाम आलम को रोक दिया गया, और ये भी अल्लाह के आगे वईद नहीं, अल्लाह के एक पैगंबर यूशा इब्ने नून जब जिहाद कर रहे थे बैतुल मक़द्दस पर, तो वो जुमा का दिन था और जिहाद इतनी तवील हो गया कि बिल्कुल सूरज जो था वो पीला होना शुरू हो गया, करीब था कि सूरज डूब जाए, और सुबह हफ्ता था और हफ्ते के दिन किताल हो नहीं सकती, उनके नजदीक बंद थी उस जमाने में यौम सब जो है किताल नहीं। अब हजरत यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि इतनी जिहाद के बाद, इतनी मेहनत के बाद अब हम बिल्कुल फतह के करीब पहुंच चुके हैं, और अगर आज का दिन गुजर जाता है और रात आ जाती है तो हो सकता है उनको और कमक पहुंच जाए, हो सकता है हमारे हालात और अच्छे न रहे। तो हदीस में मौजूद है कि आपने सूरज की तरफ देखा और फरमाया कि इन्नका मामूरतुन व अना मामूर।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, इस सिलसिले दुरूस में हमने काफी दिनों से अपने दुरूस का ताल्लुक जो है वो सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से, इनायत से, फजल व करम से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के कुछ पहलू आपके जमाने विलादत से लेकर आपके इसरा व मेराज तक बात पहुंची। असल बात तो बहरहाल ये वाजे है कि अगर हम सारी दुनिया की जबाने, सारी दुनिया की कलमे, सारी दुनिया के उकूल व अफकार इकट्ठे करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान नहीं मुकम्मल हो सकता। ये तो हमारी खुश नसीबी होती है कि हमें भी उसमें कुछ हिस्सा नसीब हो जाए। जैसे एक बड़ा तारीखी वाकया है कि जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की मंडी में नीलाम हो रहे थे तो एक बुढ़िया औरत जो थी वो भी आ रही थी, और थोड़े से सूत का चीजें जो थी वो उसके पास थी। किसी ने पूछा कि बीबी तुम कहां जा रही हो इस मंडी में, ये तो गुलामों की मंडी है, यहां तो गुलाम फरोख्त होते हैं, यहां तो शाहों का काम है, बादशाहों का, अमीरों का, गनियों का। तो उसने कहा मैंने सुना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो नीलाम हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा अजीब बात कर रही हो, तुम्हें तो आम गुलाम खरीदने की ताकत नहीं है, चीज आए कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदार बनो। उसने कहा बेटा मुझे पता है कि मैं नहीं खरीद सकती, मेरे पास कहां दौलत, कहां पैसे, कहां ताकत, लेकिन कम अज कम खरीदारान यूसुफ में हमारा नाम तो लिखा जाए। असल बात यह होती है कि जब आदमी सीरत पाक बयान करे या सुने तो हमारी सिर्फ खुशनसीबी इतनी होती है कि चलो हमारा नाम भी उस सफ में, उस कतार में शुमार हो गया, वरना सीरत पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अगर सारी दुनिया भी रतुल लिसान हो जाए तो सीरत का एक बाप भी पूरा नहीं हो सकता। तो हम सीरत के दुलूस में इस मकाम पे पहुंचे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दस में तशरीफ ले आए और आपने वहां पर जितने अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर हैं उन सब को आपने नमाज पढ़ाई। तो इसी से एक बात ये याद रखें कि ये नमाज है या रोजा है ये पहली शराए में भी मौजूद था, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में नहीं है, ये इब्तदाए शरीयत में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहिम अल खलील अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हर जमाने में ये बात मौजूद थी। क्योंकि अगर ये बात न होती तो नमाज तो मेराज में मिली है, तो पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ाते। तो साफ बात है कि नमाज पहले मौजूद थी और हजूर अला मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इबादत फरमाते थे। तो एक तो लिकाए अंबिया और दूसरा मकाम शरफ जो मिला वो था इमामत अंबिया के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बहन तो नहीं बर्दाश्त कर सकती, तुम भी जल्दी जल्दी दौड़ी और उसका क्या बात है, क्यों रो रहा है बच्चा ये? अब ये बता भी नहीं सकती बेचारी, डर के मारे कि मेरा भाई है तो क्यों रो रहा है। उन्होंने कहा दूध नहीं पीता, देखो उस औरत का दूध दिया नहीं पीता, उसका दिया नहीं पीता, उसका दिया। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तो हजरत अली बड़े खुश होने गए, रसूलल्लाह इससे बड़ी भी कोई सआदत हो सकती है कि मुझे अल्लाह का नबी अपना भाई बना ले। अब देखें अंसार का कबाल और कुर्बानी और ईसार कह देना तो बड़ा आसान है। ये जज्बा, ये चीजें इस्लाम का सबक थी। अफसोस, सद अफसोस कि आज ये तमाम चीजें गैर कौमों ने अपना ली, हमारी सारी अच्छाइयां उन्होंने ले ली और अपनी सारी बुराइयां हमारे खाते में डाल। सहाबी जो भाई बने ना जी, वो अपने भाई मुहाजिर को लेके घर गया, उसने कहा देखो मेरा भाई, अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई बना दिया। हम जो मां के पेट से पैदा होते हैं ना, वो तो सिर्फ यही है ना कि मां कहती है कि तुम भाई हो, बाप कहता है तुम भाई हो, पता नहीं औरत है, खयानत की हो, अल्लाह आलम क्या पता हो सकता है। लेकिन तुम्हारे भाई होने में तो कोई शुभ हो नहीं कि तुम्हें तो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरा भाई बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए देखो मेरा घर है, इसको दो कमरे, एक तुम्हारा एक मेरा, अगर दो कमरे नहीं ऐसे घर है तो इसको तकसीम कर लेते हैं, आधा तुम्हारा आधा मेरा। मेरा बाग है उसमें 100 खजूरें हैं, 50 तुम्हारी 50 मेरी, भाई जो सिर्फ कह देना तो आसान है ना किसी को भाई। वो एक लतीफा है ना शोरिश कश्मीरी, अल्लाह उसकी कब्र पर रहमत करे, बहुत बड़ा मुकर्रर भी था, खतीब भी था, अदीब भी था और बहुत बड़ा मुजाहिद भी था। तकरीबन 11 साल उसने अंग्रेजों की जेल काटी। तो वो एक दफा भुट्टो साहब से झगड़ा हुआ तो बाद में सुलह हो गई, कुछ लोगों ने दरमियान में पढ़ के सुलह करा दी। तो भुट्टो साहब उसके पास आ गए उसके घर में, और उसकी ये कमजोरी थी शोरिश की कि कोई आदमी उसके घर पे चल के आ जाए तो बस बात खत्म, फिर सारे झगड़े बगड़े। तो भुट्टो साहब आ गए, भुट्टो साहब किसी ने बता दिया कि भाई ये बड़ा जिद्दी आदमी है, माना तो ये अंग्रेजों की जेल से भी नहीं, तो तुम्हारी सख्तियों से कब मान जाएगा ये, इसका एक ही कमजोरी है, इसके घर चले जाओ बस खलास, सलाम वालेकुम, उसके बाद ये तुम्हारी मुखालफत छोड़ देगा। वो चुप करके घर आ गया सुलह। जब सुलह हो गई तो भुट्टो साहब ने हंसते हुए कहा कि शोरिश साहब आज के बाद आप मुझे अपना भाई समझें, आप मुझे एज ए पीएम बात ना किया करें, मुझे पीएम समझ के आप फोन ना किया करें, बल्कि आप मुझे अपना भाई समझें। तो शोरिश ने फौरन कहा कि हाँ मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप यूसुफ के भाई ना। उनने कहा डर है मुझे, यूसुफ के भी तो भाई थे ना जिन्हें कुएं में डाला था। तो उनने कहा भाई तो आप बन रहे हैं, लेकिन मैं ख्याल रखूंगा बहरहाल फिर भी कि आप मेरे वो यूसुफ वाले भाई तो नहीं है। तो बाहर सूरत कहने का मकसद यह था कि भाई का लफ्ज कह देना तो बहुत आसान, लेकिन उस पर अमलन प्रैक्टिकल तौर पे अमल करना कि भाई बन के दिखाना। उन्होंने कहा ये अच्छा, इतना इससे बड़ा कमाल ये है, एक साहब दिखाओ, उसने कहा देखो भाई मेरी दो बीवियां हैं, तुम मेरे भाई हो, तो मैं एक बीवी को तलाक दे देता हूं, लेकिन तुम इन दो को पहले देख लो, इनमें से तुझे कौन सी पसंद है, जो तुझे पसंद हो मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजर जाए तुम शादी कर लो। ये अंसार का कमाल था। और आगे भी तो फिर मुहाजरीन थे ना, हमारी तरह तो नहीं थे ना, हमारी तरह होते तो कहते यार बड़ी अच्छी बात है, ठीक है आदमी खुद अपनी बीवी देना चाहते तो क्या हार गया, खुशी से ही दे रहा है ना, हमें तो कोई ना भी दे तो देख लेते हैं, वो तो वैसे देने पर राजी हुआ हुआ है, हम तो वैसे भी तलाकें ले लेते हैं, तावीज कर लेते हैं, सहर कर लेते हैं, जादू कर लेते हैं। इसीलिए मैं तो हमेशा तकरीरों में भी कहा करता हूं कि अपने घर में कभी पीर या मौलवी को मेहमान न रखा करो, और हर आदमी को रख लिया करो, इन दो लोगों से जरूर बचा करो। कई लोग मुझसे नाराज हैं, वो कहते हैं आप मौलवियों की तौहीन करते हैं, तौहीन समझें कुछ समझें। एक तो मौलवियों को आदत होती है मुताला करने की, किताबें पढ़ने की, स्टडी बड़ी करते हैं, बतन देखा, आशा देखा, शरा देखी, एक एक लफ्ज देखा, इसी तरह इनको पाऊं भी किसी औरत का नजर आ जाए तो ये सर तक पहुंच जाए, ये मुताला शुरू कर देते, आदत होती। और दूसरी बात ये होती है कि ये गरीब भूखे होते हैं, इनको कुछ देखा हुआ नहीं होता ना, तो भूखे आदमी से हर किस्म के जुर्म की तवक्को हो सकती है। ایک گناہگار آدمی نے تو سینکڑوں عورتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے کیا گناہ کر. تو یہ مقام تھا صحابہ کا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، دیکھو انصاریوں بات سنو، تم نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر، لا ننسا فضلکم، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن خدا کے لیے ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی دلونی لسوک، مجھے ایک رسی دے دو، ایک کلہاڑی دے دو، اور مجھے بتلا دو کہ لکڑیاں کہاں آتی ہیں، کہاں بکتی ہیں، جزاکم اللہ خیرا، میں لکڑیاں بیچ کے کھانا کھا لوں گا، میں بھی کسی کے دروازے پہ پڑ کے اس کے لیے بوجھ بننا نہیں چاہتا. مہمان ہوتا ہے 3 دن، اس کے بعد کیا مہمان ہے بھائی، پھر تو بلائے جان ہے. تو اب اس مواخات کے بعد پھر حضور نے ایک حکم جاری کیا، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش کو مدینہ منورہ میں کوئی پناہ نہیں دے گا، کسی کے وہ جیران نہیں بن سکتے، جیوار نہیں بن سکتے کہ کل کو کوئی قریشی آ جائے مدینہ منورہ میں اور ایک آدمی کہہ دے کہ ہاں جی میرا دوست ہے، میں نے پناہ دے دی ہے نا، خبردار مشرک کو اب کوئی پناہ نہیں دے گا. اور دوسرا حضور نے حکم جاری کیا کہ اب کسی غیر ملک سے یا غیر قوموں سے جو معاہدے ہوں گے وہ صرف محمد الرسول اللہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی یہودی کو یہ حق نہیں، اب کسی کعب ابن الاشرف کو، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو، بنی قینقاہ کو، ان کے سرداروں کو کوئی حق نہیں، اب یہ حق صرف اسلام کا ہے. اگر کسی قوم سے معاہدہ ہوگا، عہود ہوں گے، مواثیق ہوں گے، معاہدات ہوں گے، تو صرف ہم کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے نماز کا حکم، کیونکہ یاد رکھیں نماز میں کئی ادوار گزرے ہیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو اہم عبادات، جو صلہ ہیں بین العبد و بین الرب، اس پہ کئی ادوار گزرے ہیں. پہلے زمانے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز فرض نہیں تھی، یعنی ابتدا اسلام میں مکے میں حضور بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز فرض کوئی نہیں تھی، اپنی منشے سے کسی نے پڑھ لی، کسی نے نہ پڑھی. پھر سب سے پہلے فرض ہوئی نماز کون سی؟ یہ 5 نمازیں نہیں، صرف تہجد. تہجد رات کی نماز فرض ہوئی حضور پر بھی اور صحابہ پر بھی.

आराम, या फिर ऐसा करें चलो आधी रात से भी कुछ कम इबादत कर लो, ज्यादा हिस्सा आराम कर लो। सबसे पहले जो फर्ज हुआ वो रात तहज्जुद की नमाज थी, क़ियामुल लैल जिसे आप कह सकते हैं। और क़ियामुल लैल इतना जामे लफ्ज है, याद रखें इसमें तहज्जुद भी आ जाती है, इसमें तरावीह भी आ जाती है, इसमें सलातुल फित्र भी आ जाती है। ये बड़ा जामे माने लफ्ज है, क्योंकि रात की नमाज है ना, रात में पढ़ी जाने वाली नमाज इशा भी आप रात में पढ़ेंगे, तरावीह भी रात में पढ़ेंगे, फित्र भी रात में पढ़ेंगे, तहज्जुद भी रात में पढ़ेंगे। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दूसरा हुक्म आ गया कि मेरे मदनी पाक पर तो तहज्जुद फर्ज रही, लेकिन आपकी उम्मत पे तहज्जुद फर्ज न रही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे तो सलात तहज्जुद फर्ज रही, इसीलिए हुजूर ने कभी नमाज तहज्जुद नहीं छोड़ी, इल्ला लैलतुल मुज़दलफा, मगर सिर्फ मुज़दलफा की रात में जब हजूर हज पे तशरीफ ले आए तो आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी। क्यों? शफ़क़तन अला उम्मतिही, अपनी उम्मत पे शफकत फरमाने के लिए कि भाई 10 तारीख को तो मेरी उम्मत को बड़े काम है, कनकरियां मारनी हैं, कुर्बानी करनी है, बाल कटाने हैं, एहराम खोलना है, फिर तवाफ ज़ियारत के लिए जाना है, सफा मरवा दौड़नी है, तो रात को भी जागे हुए होंगे तो सुबह बेचारे कैसे इतने बड़े काम कर सकेंगे। तो हजूर ने तहज्जुद नहीं पढ़ी, वरना कभी जिंदगी में सफर में हजर में हजूर ने कभी तहज्जुद नहीं पढ़ी। और इस रात की नमाज में जो मजा है ना जी, दुआ करें अल्लाह आपको भी अल्लाह मुझे भी नसीब करे। तो असल में हकीकत यह है कि ये एक ऐसी कैफियत है जो आदमी तकरीरों से नहीं समझा सकता। देखे ना जी, अब इसमें चाहे तो मैं पता नहीं सारे डॉक्टर भी मिलके जब तक चखेंगे नहीं बता सकते कि ये मीठी है या फीकी है, कैसी है, क्योंकि जाए। तो इसी तरह बाज चीजों का ताल्लुक उस वक्त जब तक उसके अंदर आदमी ना आए उसको समझ नहीं आता। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं ना कि अल्लाह के बड़े मजे, जो आए सो चख ले। ये कहने वाले नहीं, बताने वाले नहीं, आप जरा अल्लाह में आए, जिक्र में आए, फिक्र में आए, फिर तुम्हें पता लगे कि अल्लाह के जिक्र के मजे क्या है। तुम समंदर के किनारे पे खड़े होके मौजें गिनते रहो तो तुम्हें क्या पता कि कारे समंदर में क्या होता है। साहिल पे खड़े होके जो मर्जी आए गिनते रहो, जो मर्जी आए कहते रहो। इसलिए कुरान कहते इन नाशियातल लैली हिया अशद्द वतअन व अक्वम कीला। मेरा मदनी, रात की नमाज जो है ना, नफ्स अम्मारा के कुचलने में इससे बड़ी कोई चीज, ये इंसान के अंदर जो नफ्स अम्मारा है ना, जो बड़ाई है, जो अकड़ है, जो गुरूर है, जो अनापरस्ती है, इसको कुचलना हो तो फिर ये रात की नमाज है कि आराम है, एसी चल रहा है, बड़ा अहम सुकून है और बेहतरीन किस्म के बिस्तर पे अपनी बीवी के साथ लेटा है। उस वक्त इन सबको छोड़ के उठ के वजू करके अल्लाह के दरबार में खड़ा होना कोई मामूली सी बात नहीं होती। आदमी अपने जज्बात को कुचलता, अपने ख्वाहिशात को मिटा देता। और अल्लाह ने फरमाया कि मेरा मदनी, ये रात की नमाज ऐसी है कि फिर इसका पढ़ना जो है ना वो सिर्फ जबान से नहीं होता, बल्कि दिल और जबान जो है मुआफकत होती है उनमें, क्योंकि और किसी किस्म का ख्याल नहीं, शोर नहीं, तवज्जो नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, आप अकेले हैं, आप हैं और रब है। वो जो तन्हाई है ना जी, इसीलिए नबूवत से पहले हजूर को हुब्बल खिलवा, हजूर को तन्हाई पसंद हो गई थी। आप जाके पूरा पूरा महीना गारे हिरा में बैठे रहते। इसीलिए अभी उलमा औलिया अल्लाह और सही मानों में जो सूफिया किराम हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में चलने वाले, अभी वो इसीलिए अपने तलामिजा को बतौर इलाज जो है उनको अलहदा रखते हैं कि भाई मजालिस से बचो, खलवत से बचो, अलग बैठो, जिक्र करो, मुराकबा करो, अपने आमाल पे तवज्जो करो, अपने नफ्स पे तवज्जो करो, अपने दिल पे तवज्जो करो, रोज जो कुछ आपने आज के दिन में किया है उस पे तवज्जो करो। तो इसीलिए वो लोग उसे काटते हैं कि जब आदमी खिलवत में आता है तो खुदा की कुदरत है कि फिर उसके अंदर की जो सलाहियतें हैं वो बेदार होती हैं, और जब तुम जलवत में होते हो तो लोगों के असरा से वो बातें खामोश हो जाती, वो बत्ती जलती नहीं, जब वो जलती नहीं तो रोशनी कैसे नजर आए।
اور یہ باتیں چونکہ کسی کو سمجھائی ہی نہیں جا سکتی اس لیے بڑے لوگ مخالف بھی ہو گئے اس بات کے، کیونکہ یہ باتیں نہ پڑھنے سے آتی ہیں نہ سمجھانے سے آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ صلاۃ تہجد فرض ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، امت پر بھی، پھر اللہ نے امت سے تو معاف کر دی، حضور کے ذمہ رہی۔ اچھا پہلے پھر یہ تھا کہ بھئی آدھی رات آرام آدھی رات نماز، وہ بھی پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا میرا بدری اب اجازت ہے آپ کی امت کو جتنا پڑھ سکے نا بس پڑھ، کیوں اللہ جانتا ہے تم بیمار ہوں گے، تم میں مجاہد ہوں گے، تم میں کاروباری لوگ ہوں گے، صبح اس نے جا کے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اور پھر بیچارہ رات کو ساری رات اگر تہجد میں جاگتا رہے تو پھر کیسے جا سکے گا، تو لہذا اب اس کے لیے راحت ہے آرام ہے جتنی پڑھ سکے۔

24 घंटे आप 50 नमाजों में लगे रहते, हमारी जान तो छोड़ देना, हमारे खिलाफ अलग एजिटेशन है, मुजाहरे हैं, तकरीरें हैं। मुफ्ती साहब ने कहा कि तुम तो अभी 5 नमाजों की ताकत की मुकाबला नहीं कर रहे हो, जब हम 50 पढ़ते उस रूहानी ताकत का मुकाबला तुम कर सकते, फिर तो तुम 1 घंटा भी ना ठहरते। अभी तो हमें इतने दिन लग गए हैं तुम्हें हटाने में, इसलिए कि अभी नमाजें हमारी कम है। अगर वो अल्लाह हमें रूहानी कुव्वत अता फरमा देते 50 नमाजें पढ़ने की, तो फिर वो नूरानियत, वो कुव्वत, वो ईमान जो होता, तो तुम उसका मुकाबला फिर कर सकते, तुम तो फिर 1 दिन भी ना ठहरते। तो बहरहाल 50 नमाजें फर्ज हुई, फिर अल्लाह ने माफ फरमा दी, और 5 जब 5 रह गई तो उसमें भी अल्लाह की रहमत का मुलाहजा फरमाए कि ये फरमा दिया कि मेरा मदनी, हमने आपसे रियायत भी कर दी है, अपना फैसला भी नहीं बदला, और उसी अपने फैसले को हमने एक अजमत भी दे दी है कि मा युबद्दलुल कौलु लदई, मेरे यहां कोई फैसले तब्दील नहीं होते, ये कोई इंसानी कोर्टें नहीं है, ये कोई इंसानी पार्लियामेंटे नहीं है कि जब चाहा बदल दिया, मेरा जो फैसला है वो वही है 50 वाला, उम्मत आपकी 5 पड़ेगी लेकिन लिखेंगे हम 50 पंजाब हसन फलहू अशरम साले। अच्छा, इस कुरान की आयत को मिर्जा कादियानी पता है उसने कैसे समझा? उसने कौम से वादा किया कि मैं किताब लिखूंगा जिसके 50 जिल्द होंगे, उसके लिए मेरे मानने वाले जो हैं इतने पैसे जमा कराएं। लोगों ने पैसे जमा कराने शुरू कर दिए, पैसे जमा हो गए। अब पैसे तो जमा हो गए, उस बदबख्त ने लिखी 5 जिल्दें, 50 ना लिख सका। अब लोगों ने मुतालबा करना शुरू किया, उन्होंने कहा जी लोग हमें बड़े शर्मिंदा करते हैं कि ये कैसा नबी है जो झूठ बोलता हो, भाई नबी होकर झूठ कैसे बोल सकता है, नबी तो पाक होते। इसने कहा 50 जिल्दें, आज 2 साल गुजर गए, पैसे ले लिए, अभी तक 5 जिल्दें मैदान में आई हैं, तो मिर्जा साहब ने अपने इलाहाबाद से इल्हाम मुंतखब करके अलफजल रिसाले में जवाब दिया कि एतराज करने वाले बेवकूफ हैं, अल्लाह ने भी तो 5 को 50 कहा था, तुम भी 5 को 50 समझ लो, अल्लाह ने भी तो नबी से यही कहा था ना कि नमाज 5 पढ़ोगे लेकिन लिखेंगे हम 50, तो 5 को उनने भी तो 50, तो आप भी मेरी 5 जिल्दों को 50 समझ के पढ़ लो, बस ठीक हो गया, झूठ तो मैंने नहीं बोला। देखे ना मंतिक कैसी है उल्टी। तो अब दूसरी स्टेज ये थी कि 5 फर्ज हो गए। अच्छा, लेकिन 5 फर्ज होने के बाद मक्के में कभी तरतीब से पढ़े नहीं गए, मदीने मुनव्वरा में आने के बाद भी 5 फर्ज यूं नहीं पढ़े गए जैसे आप पढ़ते हैं। 5 नमाजें तो पढ़ी जाती थी लेकिन 2-2 रकात करके, हर नमाज 2 रकात, फजर, जुहर, असर, मगरब, इशा, सब 2-2 रकात। उसके बाद फिर हुक्म आया जिसमें इजाफा किया गया नमाजों का कि सफर में तो नमाज 2 रकात रखी गई जो असल थी, लेकिन हजर में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ज्यादा कर दिया कि जुहर की 4, असर की 4, इशा की 4, मगरब की 3, लेकिन फजर की 2 रहने दी गई अपनी असल पे। तो नमाज में ये अदवार आए, और ये सारे दौर कहां आए, मदीने मुनव्वरा में हिजरत के बाद। अब इसी तरह देखेंगे, फिर नमाज पढ़ने के लिए एक मसला था, अभी नमाज कैसे इकट्ठे पढ़े, कोई इंतजाम तो था नहीं इकट्ठे पढ़ने का, कैसे जमा हूं, क्या करें, 2 आदमी, 4 आदमी सूरज को देखकर साए का अंदाजा लगा के कि हाँ अब जिवाल हो गया है, हमने नमाज पढ़ने जाना है जुहर की। अच्छा जी, अब साया जो है 1 मिसल हो गया, 2 मिसल हो गया, अब हमने असर की पढ़नी है, अब जी गुरूब हो रहा है, हमने इशा की पढ़नी है, अब इशा मगरब की पढ़नी है, और मगरब के गुरूब के बाद जी अब शफक डूब गया, चलो जी हम जाके इशा की नमाज पढ़ाएं। तो इससे अंदाजा लगाया जाता था, और कोई चीज जमा करने वाली मुसलमानों के पास नहीं थी कि उससे वो जमा हो जाए। इस पे हजूर ने एक दिन साहबा को बुलाया, आपने फरमाया कि मशवरा करो, ये तो बड़ी मुश्किल बात, किसी को साया नजर आया, किसी को साया नजर नहीं आया, कोई बेचारा दीवाल को सही तरीके से समझ सका, कोई ना समझ सका, ये तो बड़ा मुश्किल, इसके लिए हमें एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, फिर 2 आदमी जाएं जी, बुलाओ सबको, नमाज नमाज नमाज, चलो कोई घर है कोई नहीं, किसी ने आवाज सुनी किसी ने नहीं सुनी, तो साहबा ने कहा ठीक है। एक साहब ने कहा, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लम, मेरी तजवीज ये है कि हम ऐसा क्यों ना करें कि आग जला दिया करें, आग की रोशनी दे के समझे मस्जिद के करीब से आग की रोशनी उठे। तो उन्हें कहा, उन्होंने फरमाया भाई

0: उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कमिंग डेज में ऑब्वियसली उसके बारे में पता किया जाएगा कि क्यों हुआ है, क्योंकि ये बातें भी लोगों को बताने की बड़ी ज़रूरत होती है कि ये जो डिबेट होती है ना, इसको उल्टे कॉन्सिक्वेंस भी हो जाते हैं।
1: अदनान, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अदनान, ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अब सियासत जो है लगता है कि कारोबार की शक्ल में ज़्यादा चली गई है। कारोबार से मुराद है सियासी कारोबार जो है कि बंदे को ताकत मिलती है, वक्त मिलता है। जिस तरह एकदम आपने बताया कि अभी हुकूमत बनने से पहले चार जो है लिस्कुएंगा हो गए हैं, तो ये कानूनी तौर पर इजाज़त होती है ना? परिंदा उड़ के इधर से उधर चला जाता है या किसी जगह बैठ जाता है, सहूलियात तो उसको सारी मिलती हैं, दाना तो उसको सब कुछ मिलता है।
0: राजा साहब, यही तो बात है ना कि ये जो इस बार हुआ है और पिछली बार भी हुआ था, दो तीन गए थे और मसला पड़ा था, तो इसीलिए वो अब ये सारे कानून चेक करना चाहते हैं ना, बदलना चाहते हैं कि ये कारोबार ना हो। ये एक सीरियस क्या कहते हैं चीज होती है, क्योंकि जब आप एक जिम्मेदारी लेते हो तो आप ये जो 179 है, लोकल काउंसिल में 21 हो और 42 हो, 43 हो, इनके ऊपर एक पूरे सिटी या पूरे मुल्क की जिम्मेदारी होती है। और ये कोई आसान काम नहीं है कि आपने एक कानून बनाना है, अपने पूरे मुल्क को देखना है। इसीलिए इस चीज को बंदे को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बंदा किसी पार्टी का मेंबर है, उस पार्टी के अंदर गया है, तो कोई ना कोई वजह तो बंदे की है ना कि उसने उस पार्टी को चूज किया होगा। और बंदे को बड़े सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि बंदा जब मेंबर होता है, बंदे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
1: अदनान, पार्टी में जाने के वक्त भी नज़रियात होने चाहिए, छोड़ने के वक्त भी नज़रियाती वजूहात होनी चाहिए।
0: दरअसल साहब देखें, आप जब पार्टी ज्वाइन करते हैं, आप उनकी पॉलिसी पे जाते हैं, आप अपनी कमिटमेंट पे जाते हैं, आप एक एक एक एक चीज पे जाते हैं। मैं शॉर्ट वे में कहूंगा कि मेरा रेड ब्लॉक के साथ बड़ा था, और ऑब्वियसली हो सकता है कि मैं जब अपनी वे से देखूं और 5-6 महीने बाद देखूं कि नहीं, ये बंदे ने रेड ब्लॉक की तरफ मेरा है, मगर हमने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किसी चीज के लिए किया हो, पर वो चीज ना बंदे को आ रही हो, फिर बंदा इस रीजन को सोच सकता है कि बंदे ने अब तब्दीली करनी है कि नहीं। मगर आप ये कहें कि अब आपने पार्टी ज्वाइन की है, जिस तरह ये बॉन्ड्स 25 की जो है, इसकी तो मुझे खुद समझ नहीं आई कि ये कर क्या रहे थे, क्योंकि और इनकी वजह से आप देखें ना, ये सारा डिबेट शुरू हो गया कि 50,000 स्पेयरिंग खान से सब कुछ क्या कहते हैं शुरू हो गया, तो ये फजूल है। मगर बंदे को क्या कहते हैं ना, अपनी पॉलिसी पे देख के चलने की कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह ताला करे कि
1: और
0: सबके लिए
1: इसके साथ
0: आसानियां पैदा
1: वोटर
0: हो।
1: को भी सोचना चाहिए, वोटर भी बिल्कुल ही इसी तरह होता है, आग की तरह उड़ जाता है।
0: तो सब देखिए, मसला पता क्या है, मसला ये होता है कि जब आप एक पार्टी स्टार्ट करते हैं ना, अब ये बॉन्ड्स 25 की बात कर लेते हैं, इनने एक कहा था कि हम पूरा जो सिस्टम है ना उसके साथ क्या कहते हैं एक औक्या करेंगे, और जब इनने ये बात की थी ना, तो बाद में जब इनके सारे अपने क्या कहते हैं जो चीजें बाहर निकली थी वो सारी उल्ट थी। आप ही कुछ और कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं हम कुछ और करेंगे, तो फिर आप यहां से ही देख लेना कि लोगों का क्या कहते हैं ट्रस्ट क्या कहते हैं लॉस्ट तो हो जाता है। जिस तरह ये लास्ट लुके ने ये जो सर्कस क्या कहते हैं शुरू की हुई है, कराई हुई थी 3-4 हफ्ते पहले भी और आज भी कर रहे हैं, किस्म की देखा जाए तो फिर लोगों का मिसट्रस्ट हो जाता है सियासत पे और बंदों पर कि बंदा बात कैसे करता है। आप ये कि डेफिनेटली बंदे को पता चलता है, सबको आप पता चल गया हुआ है, जितना लास्ट लोगे क्या इसका एक ही है, क्या कहते हैं मकसद है वो ये है कि मुझे बस मिनिस्ट्री की कुर्सी मिल जाए, सबको पता है, तो ऐसे पे बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट हो जाता है लोगों का।
1: अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। डेफिनेट मिनिस्ट्रीज़ में जो है वो सहूलियात भी बड़ी होती हैं, काम भी बड़े होते हैं, तो इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में दोबारा आपके साथ शामिल होंगे।
0: जी ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।
1: समय नाजरीन, ये थे अदनान अमीन अली जो कि तजिया नगार हैं, तजिया करते हैं। समय ने हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं, अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा टाइम हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 31/5/2026 का प्रोग्राम है। सामने नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप हर हवाले से जानते हैं, अगर सियासत के हवाले से नाम लें तो वो सियासत में 28 साल एक्टिव रहे, काफ लीग के सदर रहे। अगर आप सोशल वर्क का नाम लें तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कम्यूनिटी के लिए बात करें तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी का नाम लें तो सबसे सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। तो हर वो काम जो कम्युनिटी का होता है, पाकिस्तानियों का होता है, उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। मेरी मुराद है चौधरी शौकत साहब, जो कि मशहूर बिजनेसमैन है, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। चौधरी साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब और आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल और उनके जो भी मामला होते हैं उनको उजागर करते रहते हैं।
1: चौधरी साहब शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, ये खबरें लगती रहती है, प्रोग्राम होते रहते हैं, कौमी त्यौहार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। 28 मई के हवाले से प्रोग्राम हुए, डेफिनेट आप गए भी होंगे, सुना भी होगा, और ये अच्छी बात है। 28 मई मनाना चाहिए, खुशी की बात है, कम्युनिटी को इकट्ठा भी होना चाहिए, सबका प्रोग्राम होता है। लेकिन चौधरी साहब, इसमें एम्बेसी ने, हमने देखा कि हमेशा एम्बेसी हर किसी के साथ तावन करती है, कोई फर्क नहीं रखते, और उनकी अपनी मसरूफियात भी होती है। जहाँ कोई बुलाता है, कोई सियासी ना हो जो कौमी लिहाज से हो, किसी ने 24 को बनाया या यौम तकबीर, किसी ने 28 को बनाया, तो अगर इसको सियासी रंग ना दिया जाए तो इन जगहों में लोग ये जाते रहते हैं। लेकिन छुट्टियां भी आपको पता थी, छुट्टियों में लोग हाजिर भी नहीं होते, मौजूद भी नहीं होते, इस मुल्क में भी नहीं होते। तो जो सब आपने बहुत सारी बातें सुनी, हमने मीडिया में पढ़ी, तो खबरें ऐसे आ रही हैं जैसे वो, क्योंकि आप भी एक जमात से तल्लुक है, मुस्लिम लीग काफ ने भी बाइकाट किया, फलां ने फलां फलां ने भी किया, बाइकाट करेंगे, तो इस तरह की खबरें आप भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं, आप क्या कहेंगे एज ए सियासतदान और बिजनेसमैन?
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, राजा साहब बहुत शुक्रिया। राज साहब, जैसे कि आपने थोड़ा सा तफसीली बताया पाकिस्तान अम्बेसी के हवाले से, मैं समझता हूँ पाकिस्तान अम्बेसी हमारा छोटा पाकिस्तान है डेनमार्क में, और माशाल्लाह जनाब शोएब सरवर साहब जो हमारे अम्बेसडर है, वो पूरा अम्बेसी कामला इस वक्त बहुत ही अच्छा काम करता है, और पूरी कम्युनिटी के साथ इनका तावन होता है। कोई भी काम हो, कोई भी कहीं गैदरिंग हो पाकिस्तान के हवाले से, शोएब सरवर साहब हमेशा टाइम देते हैं, अम्बेसी हमेशा टाइम देती है। और आपको पता है ये जो इशू बना था, ये काफ लीग के हवाले से जो लिखा है, मेरा इस ग्रुप के साथ कोई तल्लक नहीं है, काफ लीग के ग्रुप के साथ तल्लक नहीं है ये, और मैं समझता हूँ कि ये किसी बंदे का फर्दन फैसला हो सकता है कि बाइकाट कोई करे अपना पाकिस्तान अम्बेसी का। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे पाकिस्तान अम्बेसी के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान अम्बेसी के साथ रहूंगा हमेशा से। पाकिस्तान अम्बेसी हमेशा से कम्युनिटी की आवाज बनी है, कम्युनिटी के मसाइल को उजागर किया है, उनके साथ होते हैं, और जो भी दिन मनाए, जो भी कोई ऐसा काम हो, जो भी ऐसा दिन हो, तो आप अप्रोच करें अम्बेस शोएब सरवर साहब से या फर्स्ट एफपीए अली स्टार साहब से, तो वो टाइम देते हैं। ये दिन इस तरह बन गया था क्योंकि ईद का दिन था, ईद के दूसरे दिन इन नून वालों ने प्रोग्राम बनाया था। इसमें आपको पता है कि अपने अपने मामला होते हैं, वो ये तो हम छोटे से अपने घर कुंबे की बात करते हैं, वो तो अम्बेसडर है, पूरे पाकिस्तान के अंबेसडर है, पूरे पाकिस्तान की अंबेसी है, और पूरी दुनिया के लिए वो अंबेसडर है, पाकिस्तान के अंबेसडर जो है, तो उनका अपने भी टाइमिंग होती है अपना, हो सकता है उनका शेड्यूल टाइट हो, उनका कोई इस तरह का हो, इन लोगों को चाहिए कोई और दिन रख लेते, ईद के दूसरे दिन ही इन्होंने रखा। लेकिन मैं उनकी उन पर बात नहीं करता, मैं एज ए अंबेसी के हवाले से करता हूँ। अंबेसी बहुत अच्छा काम कर रही है, शोएब सरवर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ तावन करते हैं, और ये बिल्कुल प्रोपोगंडा हो रहा है, बिल्कुल इसका हम बिल्कुल कम्युनिटी डेनमार्क की कोई हिस्सा नहीं है, और हमेशा से पाकिस्तान अम्बेसी ने काम अच्छे तरीके से किया है, हर मसले पे काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है, किसी की जाती हो सकती है, लेकिन इसका पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कोई तल्लक नहीं है। और जो खबरें भी लगती हैं, खबर वालों को भी चाहिए कि वो अपनी तरदीद किया करें, अपना देखें इस तरह की खबरें जो है ना, पहले उनको जो है ना पिन पॉइंट करके उसके बाद ये करनी चाहिए। ये बिल्कुल, इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम पाकिस्तान अम्बेसी के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान अम्बेसी के शाना बिशाना रहेंगे, शोएब सरवर के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान होने के बावजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो है ना अम्बेसडर जो है ना पाकिस्तान के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत इस वक्त दुनिया कर रही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम इन त्योहारों पे, इन दिनों में या कोई इस तरह की बात जो होती है उस पे पाकिस्तान की या पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बिल्कुल हम नहीं एक्सेप्ट करते। हम पाकिस्तान अम्बेसी के साथ हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह पाकिस्तान अम्बेसी के साथ रहेंगे।
1: जो सब आपका मौकफ आ गया और आपने बड़े खुले अल्फाज में अपना मौकफ बयान किया और ये आपका राइट है। समय नाजरीन, ये जो प्रोग्राम होता है ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है, तो जब भी कोई बात की जाए तो सोच समझ कर बात की जाए। यहाँ आज़ादी है बात करने की, बोलने की, लिखने की आज़ादी है, तो हम लोग जमहूरी हैं, जमहूरी बात जमहूरियत में बात होनी चाहिए, लेकिन मौके की मुनासिबत से बात होनी चाहिए। खाली प्रोपगंडे की शक्ल में एक बयान दाग देना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जिस तरह चौधरी शौकत साहब फरमा रहे हैं, ये आपका हक है बात करना, हम किसी को रोकते नहीं है कि वो बात नहीं कर सकता, कोई भी बात करना चाहे तो उसको दिए, हमारा टाइम हाजिर है। चौधरी साहब आपने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया, मुल्की हालात पर थोड़ी सी बात कर ले। पाकिस्तान बड़ी अब तरक्की कर रहा है और चूंकि आप खुद बिजनेसमैन हैं, आपको पता है कि तरक्की हो रही है या नहीं हो रही। ये आप सारा कंस्ट्रक्शन का काम देखें, आपके खारियां गुजरात में आप देखें कितने तरक्याती काम हो रहे हैं। चौधरी शाफे साहब जो है बड़े काम कर रहे हैं, उनके भाई जो वजीर है हमारे ओवरसीज के, वो बड़े काम कर रहे हैं। और खबरें ये भी आ रही हैं कि वो 14 अगस्त को चौधरी सालक साहब भी आएंगे, और इन चीज़ों का डेफिनेट आपको भी पता होगा, आपको इलम में होगा, आपको इतमाद में लिए बगैर तो लीडर जा नहीं आते।
2: राय साहब, जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान के हवाले से माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजान है और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की दुनिया में रिस्पेक्ट हो रही है। कुछ लोग होते हैं कि जो मनफी सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अच्छा सोचती है, पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ देगी। और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना अब बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं पंजाब, अपने इलाके की, जैसे मेरे बात की आपने हमारे गुजरात की, तो जो है ना हमारे गुजरात में हमारे चौधरी बरादरान माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो पहले होता था कि करप्शन ये हो रहा है वो हो रहा है, कि कोई भी अपोजिशन लोग भी वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, चौधरी शाफे साहब की, चौधरी सालक साहब की, कहते हैं कि बहुत शरीफ बाप के बेटे हैं, अच्छे हैं, हर बड़े अच्छे तरीके से मनज़म तरीके से ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए और अपने ज़िले के अपने डिस्ट्रिक्ट के तरक्की के लिए के ये काम कर रहे हैं। सालक साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ओवरसीज की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। देखें, ये पहले कश्तियाँ डूबती थी और उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाके दौरे करके उन्हें कहा कि हमें पैकेज दें ताकि हम लीगल तरीके से अपनी आवाम को भेजें और ताकि वो पाकिस्तान के लिए भी खिदमत करें और आप लोगों के मुल्क में जहां आते हैं वो भी लीगल तरीके से आके खिदमत करें। ये उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और अब जो प्रोपोगंडा पाकिस्तान का होता था कि ये दो नंबरी लोग भेजते हैं, इस तरह करते हैं, ये इनमें मेरे ख्याल में बहुत हद तक जो सालक साहब जब आए हैं तो उसके बाद ये काम खत्म हो गया है और मैं समझता हूँ ना होने के बराबर रह गया। तो बाकी भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कोई थोड़ा सा है वो भी खत्म होना चाहिए, लीगल तरीके से पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और चौधरी शाफे साहब जो है पंजाब में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहे हैं गुजरात के हवाले से, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से वो जो है ना डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैं समझता ये बेमिसाल है और इसी तरीके से ये होना चाहिए। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अभी रुकने वाला नहीं है, पाकिस्तान इस तरीके से तरक्की करेगा तेजी से कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया की जो है ना पूरी दुनिया कहेगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने थोड़े से अरसे में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। पाकिस्तान की क्यादत ने, चीफ मार्शल जो है ना हमारे हैं, वो फौज हमारी जो है अच्छा इस तरीके से किरदार अदा कर रही है, जो है ना दहशतगर्दों पे काबू पा रही है। उसके बाद ये देखे मुल्क के बारे जो जंग हो रही है, इतनी बड़ी जंग जो है ना रुकवाई है पाकिस्तान ने, ये छोटी सी बात नहीं है, ये पाकिस्तान का कुदरती, अल्लाह पाक ने इसकी रस्सी जो पकड़ी हुई है, अल्लाह पाक तरक्की दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को, अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्कियों के रास्ते में गामजान इस तरीके से तेजी से जो कर रहा है कि अल्लाह पाक के पीछे जो है ना ये हमारी मदद है अल्लाह पाक की, जो इस तरीके से इतनी तेजी से चीफ मार्शल साहब जो है ना हाफज जो है और कुरान पाक हिफज किया हुआ है, इससे तरीके के अल्लाह पाक उनको और जिंदगी दे, इस तरीके से वो अच्छे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सियासी हवाले से वो खुद देख ले कि ये जो प्रोपोगंडे होते ही रहते हैं, लेकिन हम जो अब डेनमार्क में रहते हैं हम फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट दुनिया में हो रही है, हमारी भी हो रही है और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट हो रही है कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है जो कि पूरी दुनिया को अमन के रास्ते में गामजान कर सकता है। राज साहब,
1: चल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया, इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा।
2: जी बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत मेहरबानी, तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। सामान्य नाज़रीन, ये थे चौधरी शौकत जो कि डेनमार्क के मशहूर बिजनेसमैन हैं। उन्होंने बातें की, दिल की बातें की और बड़ी खुलकर बात की, कोई लगी लिपटी बात नहीं की, एज ए पाकिस्तानी, एज ए सच्चा पाकिस्तानी उन्होंने अपने ज़मीर की बात की। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसी मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
3: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का ताज़ा तरीन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 31/5/2026 का प्रोग्राम है, दारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त आपसे बात कर रहे हैं और आपको ताज़ा तरीन मालूमात भी देते हैं और शहर में खबरें भी गर्दिश करती रहती हैं और लोगों के नाम भी जो है इस्तेमाल हो जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता कि मेरा नाम किस जगह इस्तेमाल हुआ, मेरा नाम किसने लिख दिया है। तो डेनमार्क की एक बड़ी मौजूद शख्सियत जो कि मुस्लिम लीग काफ के जो है यहाँ पंजाब के वो नायब सदर है, यहाँ इन्होंने अपनी टीम चंद दिन पहले हुए उन्होंने मुकम्मल की, तो एक खबर चल रही थी तो उन्होंने हमने कहा जरा उनसे पूछ लें। ये खबर चूंकि आपकी जमात के नाम से है तो चूंकि आपकी जमात को आप हेड कर रहे हैं, पंजाब के आप नायब सदर है, मिर्जा अजहर बेग साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बड़ी मेहरबानी मेरी तरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी
1: बेग साहब, मैंने छोटी सी तमीज बांध दी है और आपका जिक्र हुआ कि पाकिस्तान अंबेसी के खिलाफ आपका नाम भी जो इस्तेमाल किया गया, आपकी जमात का नाम इस्तेमाल किया गया, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान अंबेसी के मुतालिक?
2: जी जो भी किसी ने, पहले तो मुझे पता ही नहीं है कि हम लोग किन के साथ खड़े हो गए अंबेसी के खिलाफ। ये बोला कि हम अंबेसी से बायकॉट करते हैं, हमारी अंबेसी है, हमारे पाकिस्तान है छोटा और हमारी नुमाइंदगी करते हैं और हम लोग कभी भी उनके खिलाफ नहीं चलेंगे क्योंकि वो हमारे मुल्क की इज्जत का मसला है। तो ये छोटी छोटी बातों पे जो फेक स्टोरी लगा देते हैं, चला देते हैं, जी हम भी इकट्ठे हैं तो हम बायकॉट करते हैं, जो भी ये छोटी छोटी पार्टियां करते हैं, बुलाते हैं सियासी या गैर सियासी अंबेसी को। मैंने देखा है कि वो हर जगह पे हर मौके पे वो अम्बेसडर साहब और सेक्रेटरी साहब आते हैं। मैं बड़े प्रोग्रामों में गया हूँ जो पाकिस्तानी जो फंक्शन वगैरह होते हैं।
1: तो आप अम्बेसडर साहब के काम से मुतमिन है या अम्बेसी के अमला से मुतमिन है आप?
2: जी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हर बंदे को मैंने देखा कि वो वेलकम करते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है कि ये बंदा बिजनेसमैन है, ये बंदा काम करता है इधर, कोई वो शख्सियत को सलाम नहीं करते, वो एज ए पाकिस्तानी सबको वो सलाम दुआ लेते हुए मैंने खुद भी देखा, मेरे साथ भी उन्होंने सलाम दुआ लिया। मगर कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ लोग जरा पीछे होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम होता है, वो अम्बेसी के जाते रहते हैं गा बुगा काम काज के लिए भी वैसे भी। तो वो बंदे को जेलस नहीं होना चाहिए, सब लोगों की सलाम दुआ है, सब की अम्बेसी है, सब जाते हैं, सब बैठते हैं, मिलते हैं। वो कोई वो मसरूफियात में से अगर उनके पास नहीं टाइम होता तो कोई इनवाइटेड करता है तो
1: बेग साहब इसका मतलब हुआ कि आप हमेशा की तरह पाकिस्तान अम्बेसी के साथ खड़े हैं और आप खुद कह रहे हैं जिम्मेदार आदमी पंजाब के आप नायब सदर हैं और आप कह रहे हैं कि अम्बेसी बहुत अच्छा काम कर रही है और आपको फेक स्टोरियां आपके नाम फेक स्टोरियां चल जाती हैं आपकी जमात का नाम लेकर।
2: मैं कैसे बहिजान उनको बोलूं कि वो, मैं कैसे कह सकता हूं कि वो पाकिस्तान अम्बेसी अच्छा काम नहीं कर रही है, अम्बेसी ऐसे नहीं है, ऐसे है।
1: वो लेकिन इस्तेमाल हुआ है ना काफ लीग का नाम इस्तेमाल हुआ, काफ लीग बायकॉट करेगी?
2: जी नहीं, काफ लीग कोई बायकॉट नहीं करेगी, काफ लीग अम्बेसी के साथ है और हमारी क्यादत कभी भी ऐसे बयान को कबूल नहीं करती। कौन बयान ये दे रहा है हमारी तरफ से, कौन लगा रहा है मुझे बंदा बताए, हम ऐसे नोटिस लेंगे, वो कोई बंदा नहीं कर सकता, कोई ऐसी बात नहीं कर सकता पाकिस्तान अम्बेसी के खिलाफ जो हमारी पार्टी का बंदा है, वो कोई ऐसे नहीं हो सकता।
1: चले बेग साहब, आपका वाजा मौकफ हो गया चूंकि आप ही हेड है हर चीज के, तो आपने अपना बयान दे दिया, तो बाकी खबर तो खुद फेक आपने कहा, तो फेक खबरें इसी तरह बैठ जाती हैं, जिस तरह चलती हैं इसी तरह बैठ जाती हैं।
2: अम्बेसी हमारे जो देखे ना हमारी क्यादत कभी भी अम्बेसी के खिलाफ हमें कोई भी हमारा बंदा बोलेगा काफ लीग का तो वो नहीं बोलने देंगे, क्योंकि अम्बेसी तो उन्होंने खुद लगाए हैं बंदे, तो हम ही उनको बोलेंगे ये बंदे अच्छे नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। मुझे मेरे नोटिस में होगा तो मैं जरूर नोटिस लूंगा और मैं अपनी क्यादत को भी बोलूंगा, उसका कोई काम नहीं है पार्टी के अंदर जो बंदा अपनी मर्जी से अम्बेसी के खिलाफ बोलेगा। कौन सा अम्बेसी ने हमारे साथ जुर्म किया है या ऐसा काम किया है कि हम अल्लाह माफ करके उनके खिलाफ चलेंगे? नहीं चलेंगे।
1: बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया,
2: बड़ी मेहरबानी।
1: सबक नाजरीन, ये थे मिर्जा अजहर बेग साहब जो कि पंजाब के नायब सदर हैं और इन्होंने यहाँ पार्टी को मनज़म किया और उन्होंने फुल जो है बड़े ज़ोर से तरतीद की, वो कानूनी हक भी अपना वो रखते हैं कि उनकी पार्टी का नाम इस्तेमाल किया गया। कोई बात कहना चाहता है तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।